0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में

भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: পরপর দুখানি অতুল প্রসাদের গান শুনলেন শিল্পী অসীম কুমার ঘোষ। একটু পরেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচক পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आन्ध्रप्रदेश कर्णाटक यात्रायां भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे प्रधानमन्त्री भोगापुरम् इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं षट्शताधिक पञ्चसहस्रकोटिरूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं षष्टिलक्ष यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री 80-अधिक-अष्टशताधिकैकसहस्रकोटिरूप्यकाधिक व्ययुताः राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री कर्णाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेषभावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आह्वन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न, अपि तु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिकसञ्चारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रियराजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत्, यस्मिन् तस्मै तस्य दिवङ्गतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिकतिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपि तु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा सञ्चयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा सञ्चयन प्रणालीनां न्यूनतम सञ्चयन क्षमता 2 होरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000-2,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य तथाकथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं POJK इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन्

0: वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल SE.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का

0: सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा। कार्यक्रम भाव प्रधान गीतों और बातों का रसधारा। रसधारा में आज हम बात करेंगे सुरक्षित मातृत्व की। सुरक्षित मातृत्व की बातें और सिलसिला गीत संगीत का चलता रहेगा पूरे 10 बजे तक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज के साथ। सुनते हैं फिल्म बेटा का गीत जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है आनंद मिलन का।

बाबा प्रधान गीतों और बातों के कार्यक्रम रसधारा में आज हम बात करेंगे स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ समाज की आधारशिला सुरक्षित मातृत्व की, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महिला को गर्भधारण से पहले, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और देखभाल उपलब्ध हो जिससे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। मातृत्व केवल बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य का निर्माण है। इसलिए सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक परिवार, समाज, राष्ट्र की पहली जिम्मेदारी है। भारत सरकार भी मातृ एवं शिशु दर, मृत्यु दर को कम करने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।

मातृत्व एक महिला के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण है, जिसमें गर्भधारण, गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के पालन पोषण की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। यह केवल जैविक परिवर्तन नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन का भी समय है। यदि इस अवधि में उचित पोषण, समय पर स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकीय देखभाल मिले तो माँ और शिशु दोनों का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। सुरक्षित मातृत्व की बात हम कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत होती है गर्भधारण से पहले। सुरक्षित मातृत्व की नींव स्वस्थ शरीर में गर्भधारण से पहले ही रख दी जाती है। गर्भधारण की योजना बनाने वाले दंपति को स्वास्थ्य जांच अवश्य करानी चाहिए। महिलाओं में रक्त की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड जैसी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार आवश्यक है। गर्भधारण से पहले संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनानी चाहिए। व्यसन जैसे तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह से बचना चाहिए। चिकित्सक की सलाह से

फोलिक एसिड की गोलियां लेना जन्मजात व्यक्तियों के खतरे को कम करने में सहायक होता है। बातें जारी रहेंगी सुरक्षित मातृत्व की, कार्यक्रम रसधारा में। फिलहाल लता मंगेशकर की आवाज आप सभी के लिए।

सुरक्षित मातृत्व के लिए हमने बात की गर्भाधान से पहले की जाने वाली तैयारियों की। गर्भावस्था की पुष्टि होते ही महिला का निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाना और अपने आप को गर्भस्थ महिला के रूप में पंजीकृत करवाना बेहद आवश्यक है। गर्भवती महिला को कम से कम 4 नियमित प्रसव पूर्व जांच अवश्य करानी चाहिए। इन जांचों में रक्तचाप, वजन, रक्त की जांच और हीमोग्लोबिन, शुगर, मूत्र परीक्षण तथा भ्रूण के विकास की निगरानी की जाती है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और हरी सब्जियां, फल, दूध तथा दालों का सेवन करना चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां चिकित्सक के निर्देशानुसार नियमित रूप से लेनी चाहिए। पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम भी आवश्यक है।

गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए आवश्यक टीके भी निश्चित समय पर लगवाना बेहद जरूरी है। टीकाकरण माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार टिटनेस डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं जो माँ और नवजात को टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी से बचाते हैं। आवश्यकता अनुसार अन्य टीके भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगाए जा सकते हैं।

मातृत्व। सृष्टि के विकास का आधार, मानव जीवन का आधार। और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम रसधारा में सुरक्षित मातृत्व की। प्रसव हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स या एएनएम की देखरेख में स्वास्थ्य संस्थान में होना चाहिए। संस्थागत प्रसव के जटिल परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो जाती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की संभावना काफी कम हो जाती है। प्रसव के बाद भी कम से कम 48 घंटे तक मां और शिशु की निगरानी आवश्यक होती है। शिशु के जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, शिशु के लिए प्राकृतिक अमृत माना जाता है, क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जन्म से 6 महीने तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद पौष्टिक पूरक आहार शुरू करते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना लाभदायक होता है। स्तनपान से शिशु को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है और मां के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व की, तो शिशु के साथ साथ पूरी प्रक्रिया मां के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु के स्वास्थ्य के लिए।

सुरक्षित मातृत्व यानी कि माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य, नवजात शिशु का समय पर टीकाकरण अनेक गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जन्म के समय BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन सहित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने चाहिए। खसरा, रूबेला, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, निमोनिया और अन्य गंभीर रोगों से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। अक्सर प्रसव के बाद पूरे परिवार का ध्यान नवजात पर केंद्रित हो जाता है, जबकि प्रसव के बाद माँ की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। माँ को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित स्वास्थ्य जांच और मानसिक सहयोग मिलना चाहिए। यदि अत्यधिक रक्तस्राव, तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई या गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सुरक्षित मातृत्व के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से कुछ योजनाओं के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन इस गीत के उस पार। सुनते हैं कार्यक्रम रसधारा में अगला गीत।

भारत सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निशुल्क प्रसव पूर्व जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराता है। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए पात्र गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निशुल्क जांच, दवाइयां, उपचार, भोजन, रक्त एवं परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रथम जीवित शिशु के जन्म सहित पात्र लाभार्थियों को मातृत्व के दौरान

आंशिक वेतन क्षति की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, टीकाकरण और पोषण सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराता है। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण और एनीमिया को कम करने तथा मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सुरक्षित मातृत्व केवल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, परिवार को, गर्भवती महिला को सम्मान, भावनात्मक सहयोग, पौष्टिक भोजन और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। पति और परिवार के अन्य सदस्य नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करें। समाज में मातृ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है।

सुरक्षित मातृत्व स्वस्थ भारत की आधारशिला है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी शिशु स्वस्थ होगा और सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा। गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य की तैयारी, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, संतुलित पोषण, आवश्यक टीकाकरण, सुरक्षित संस्थागत प्रसव, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान तथा शिशु का पूर्ण टीकाकरण, ये सभी सुरक्षित मातृत्व के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सरकार की नियमित योजनाओं का लाभ उठाकर तथा परिवार और समाज के सहयोग से प्रत्येक माँ और प्रत्येक नवजात को सुरक्षित, स्वस्थ और संपूर्ण

स्वास्थ्य, सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आज़ादी शुरुआत दी जा सकती है। सुरक्षित मातृत्व केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम रसधारा यहीं तक। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे हैं, सुन सकते हैं। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार, सुनते रहें, साथ बने रहें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना

0: का जिक्र किया जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली यह प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्षिंग ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. In Karnataka, Prime Minister Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka today. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and in national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He

बातें कुछ वो जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, कुछ वो जिन्हें हम सुनाना चाहते हैं। तो बन जाए हम सफर, थामिए हाथ अपने मेजबान सरफराज का। दोस्तों, हफ्ते का दिन है और लाए हैं मौजूआत की बहार और खूबसूरत नगमे। तो फिर ताखीर कैसे, चल पड़े हमारे साथ सुहाने सफर पर। अर्ज किया है, जरा सी जिंदगी है मगर अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई मगर इंसान बहुत है। जरा सी जिंदगी है मगर अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई मगर इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। दोस्तों, ये भी इश्क की एक अदा है, ज़रूरी नहीं कि महबूब आपको दिल के करीब ही रखे। वक्त हो चला है इसी के साथ आज के आईने का।

हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचेता पर सरफराज के साथ। दोस्तों, जिंदगी चार रोजा है। जिंदगी जिंदा दिल इंसान इसे हंस कर गुजारते हैं। आप तय करें कि आप इसे कैसे गुजारेंगे। इसी के साथ अब पेश है खूबसूरत नगमों का सिलसिला। सुरेश वाडेकर की दिलकश आवाज में बोल है प्रकाश मेहरा के, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी और फिल्म ईमानदार।

दोस्तों कहते हैं कि इश्क में आशिक के हिस्से में आता ही क्या है सिवाय दर्द कर्ब और जुदाई और एहसास के अलावा। कहते हैं कि इनका ही तस्वर है महफिल हो के तन्हाई, उनका ही तस्वर है महफिल हो के तन्हाई, समझे कोई दीवाना जाने कोई सौदाई। नगमों का यह सिलसिला जारी रहेगा और अब पेश खिदमत है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा नगमा। फिल्म का नाम है प्रेम गुर रोग, बोल लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने और मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

मोहब्बत में मुसाफत की नज़ाकत मार देती है, यहाँ पर एक साथ की हिमाकत मार देती है। हमारे साथ चलना है तो मंजिल तक चलो हमदम, अधूरे रास्तों की ये रफाकत मार देती है। लेकिन पर दोस्तों अभी मंजिल काफ़ी दूर है और हम आपको लिए चलेंगे 11 बजे तक, और इसी तरह से खूबसूरत प्रोग्राम का नजराना आपके लिए हम लाए हैं। और अब बारी है इस हफ्ते का शहनामा का। शहनामा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रेडियाई हफ्ता भर की अदबी समाजी व सकाफती सरगर्मियों की रेडियाई झलकियाँ समात फरमाते हैं।

0: बदलते मौसम में ताजगी भरे एहसासात के साथ हफ्ज़ रोज़ा शहरनामा में आपका खैर मकदम है। अदबी, समाजी व सकाफती मौजूआत पर मबनी रेडियाई झलकियों के साथ मैं हूँ सरफराज। इस हफ्ते इन मौजूआत का जिक्र करेंगे जो सुर्खियों में रही। सबसे पहले बातें करेंगे हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज की। 28 जुलाई को दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया गया। जिगर की सोजिश या हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आलूदगी की वजह से फैलता है। इससे बचाव की तदबीरों की बातें करें तो वैक्सीनेशन और सफाई की अहमियत को उजागर के साथ आप इससे महफूज रह सकते हैं। जहां तक इसके अकसाम का ताल्लुक है तो ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई पर मुश्तमल है। ताहम इब्तदाई तशखीस की वजह से इस पर काबू भी पाया जा सकता है। इस खास दिन को मनाने का मकसद अवाम को खौफजदा नहीं बल्कि इन्हें बाशऊर बनाना और मोहतात रखना है। इस मर्ज के ताल्लुक से हमने शहर के एक मारूफ डॉक्टर जावेद वी सादिक से बातें की। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा।
1: वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इस तरह का और भी 11 डेज है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, जैसे मलेरिया डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, एड्स डे, इम्यूनाइजेशन वीक, नो टोबैको डे, ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, पेशेंट सेफ्टी डे, इस तरह का बहुत सारा है। आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस लीवर का एक इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, एक आघात है। ये कैसे होगा? ये कॉमनली जो होता है वायरस से होता है। वायरस जो है कई प्रकार का है, जिसे हेपेटाइटिस का ए, बी, सी, डी और ई वायरस, 5 टाइप का वायरस है। अल्कोहल पीने से होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, कुछ फंगल इन्फेक्शन से भी होने का चांस है, और कुछ ड्रग्स जो है या दवाई जो है उससे भी आपको हेपेटाइटिस होने का चांसेस है। कॉमनली यूज ड्रग्स है जैसे एक्सेस ऑफ पैरासीटामोल, जो बुखार का दवाई है या दर्द का दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, सबसे हेपेटाइटिस होने का भी डर है।
0: इसी के साथ अब आइए रुख करते हैं अदबी मौजूआत की तरफ। दोस्तों, शहर निशात को यूं ही नहीं इल्म का गहवारा कहते हैं। यहाँ की हर गली हर मोहल्ले से इल्म और अदब के सोते फूटते हैं। पिछले हफ्ते 25 जुलाई को एक अदबी महफिल का इनेकाद किया गया, जहां एक किताब के इजरा के साथ शेरी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया था। दोस्तों, वही कौमें जिंदा रहती हैं जिनमें इल्म और अदब की गंगा बहती है। इस महाना नशिस्त के ताल्लुक से बुजुर्ग शायर व अदीब हलीम साबिर क्या कहते हैं, आपकी समातों के नजर है।
2: 26 जुलाई को बज़्म फिगार अज़ीमा आबादी का महाना मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसका अहतमाम बज़्म के सेक्रेटरी रईस अहमद जाफरी ने किया। इब्तदाई दौर में रुबाइयों का गुलदस्ता ख़वातीन ज़माना का इजरा किया गया, जिसकी सदारत मुस्तफा अकबर ने की और डॉक्टर महनाज वारसी के हाथों गुलदस्ते की रून नुमाई हुई। हलीम साबिर ने पहले नात पेश की, उसके बाद इजहार तशक्कुर अदा किया। दूसरे दौर में शोरा और शायरात का मुश्तरका मुशायरा था, लिहाजा शोरा के दौर में फसीह अहमद साहिर ने सदारत की और शायरात के दौर में डॉक्टर निगार सुल्ताना की सदारत में शायरात ने अपने कलाम पेश किए।
0: इसी के साथ अब लिए चलते हैं आखिरी ताजदार अवध हजरत वाजिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज में, जिसकी अदबी पहचान आज भी बाकी है। यहाँ जबान और अदब से लोग आज भी गहरा लगाव रखते हैं। अदब की दुनिया का एक मारूफ अदारा ने उर्दू जबान से उल्फत रखने वाले खुदाम उर्दू को इनके खिदमात का सिला देने के साथ उन बच्चे बच्चियों को भी इनामात से सरफराज किया जिन्होंने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तहानों में लिसानियत में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। अदारा के रियासती कमेटी के सदर मोहम्मद इजहार आलम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जबानी।
3: हमारे अदारे की जानिब से पिछले कई सालों की तरह इस साल भी माध्यमिक और हायर सेकेंडरी 2026 में उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा तालिबात जिन्होंने नुमायां नंबरों से उर्दू सब्जेक्ट में कामयाबी हासिल की, उनकी हौसला अफजाई के लिए

0: एक पुरतपाक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से शौचना नौशोजना हावड़ा हुगली कोलकाता और बर्धवान जैसे दूर दराज के इलाके से आए तलबा तालिबात जिन्होंने उर्दू में कम से कम 90 नंबर हासिल किया।
1: और अब चंद बातें उर्दू टैलेंट अवार्ड की। गुज़श्ता 25 जुलाई बरोज सनीचर एक और अदारे की जानिब से मध्यमिक और हायर सेकेंडरी टॉपर तलबा तालबात के लिए इजाजिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। सदर महफिल हफीजुर रहमान ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
2: वो जबान नहीं हो सकती है जो दूसरों की जबानों से मोहब्बत करने से आपको बाज रखे। सारी जबानें, ये भी बात मैं वजीफे के तौर पे कहता हूँ कि सारी जबानें आपस में बहन हैं, उनका रिश्ता मजबूत होना ही चाहिए। हम बंगाल में हैं, बंगाली जबान जाने पढ़े और हिंदी भी जाने इंग्लिश भी जाने, जितनी जबानों का आप पर कबूर होगा उतने ही कम्फर्टेबल होगा।
1: हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी के साथ आइए अब जिक्र करते हैं उर्दू अदब के उस अजीम हस्ती का जिन्होंने न सिर्फ अपने कलम से उर्दू अदब को मालामाल किया बल्कि गंगा जमनी पहचान के अलमबरदार बने। मेरी मुराद धनपत राय श्रीवास्तव से है जिसे अदब की दुनिया में पहले नवाब राय तो बाद में मुंशी प्रेमचंद से पहचान हासिल हुई। उर्दू और हिंदी के इस अजीम मुजाहिद की पहचान इनकी अफसाना निगारी और नावल से है। 31 जुलाई को वाराणसी में पैदा हुए अदबी दुनिया के इस अजीम कलमकार को याद करने के लिए गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स ने इनकी यौम पैदाइश पर दो रोजा शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। कॉलेज की प्रिंसिपल और सदर शोभा उर्दू और हिंदी लायक सताइश हैं जिन्होंने इस खूबसूरत बज्म की आराइश की। आइए जानते हैं कॉलेज की प्रिंसिपल शरीकतुल मौला से इनके तासुरात।
3: गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज में शोभा उर्दू और हिंदी की तरफ से मुंशी प्रेमचंद की यौम पैदाइश के मौके पर दो रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें पहले रोज़ स्टूडेंट सेमिनार हुआ और मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पर स्टूडेंट्स क्विज का एहतमाम किया गया। मुंशी प्रेमचंद पर वॉल मैगज़ीन का भी इफ्तिताह किया गया। दूसरी रोज़ एक्सटेंशन लेक्चर का एहतमाम किया गया जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शोबा हिंदी के सदर और श्री रामपुर कॉलेज की सदर शोबा उर्दू ने लेक्चर पेश किए। प्रोग्राम का इख्तिताम तकसीम इनामात पर हुआ।
1: यहाँ सदर शोभा उर्दू शबनम परवीन की काविशों का जिक्र भी लाजमी है। इस खूबसूरत प्रोग्राम के ताल्लुक से इन्होंने अपने तासुरात इन लफ्जों में बयान किए।
4: हर साल की तरह इस साल भी मुंशी प्रेमचंद के 146वीं सालगिरह के मौके पर हम लोगों ने कॉलेज में दो रोज़ा तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब शोबा उर्दू और हिंदी के जानिब से इमाम करार पाया।
1: दोस्तों, इन मौजूआत के साथ साथ जिन दिगर मौजूआत ने सुर्खियां बटोरी हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग और फितरत के तहफ्फुज़ से मुतालिक अहम दिनों का इनेकाद भी इसी हफ्ते के अहम मौजूआत में शामिल थे। दोस्तों, अभी आप अदबी समाजी व सकाफती सरगर्मियों पर मबनी मौजूआत की रेडियाई झलकियाँ समात फरमा रहे थे। तहरीर व तरतीब थी सरफराज अहमद की। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। दोस्तों, अभी आप शहरनामा समाप्त फरमा रहे थे और अब वक्त हो चला है आकाशवाणी कोलकाता की खसूसी पेशकश हिंदी उर्दू सबक का। सामिन, इस प्रोग्राम का मकसद गैर उर्दूदान हजरात को उर्दू से आशना कराना है। आज आप अशरफ अहमद से उर्दू ज़बान के कवायद समाप्त फरमाएंगे।
5: हिंदी लेसन पर मबनी प्रोग्राम तालीम रोशनी है और जबान उस रोशनी की कुंजी। सामीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू सीखने का नया सिलसिला جو مزید کئی قسطوں میں ہو چکا ہے. آپ سیکھ رہے ہیں اردو بہت آسان طریقے سے، کیونکہ آکاشوانی کولکاتہ آپ کو اردو

0: भी मुजक्कर होना चाहिए। आप जैसे बंगला में चल जाता है, लेकिन इसमें जिंस का हिंदी और बंगला उर्दू में जिंस की बड़ी पहचान है और इसकी जरूरत हो जाती है और जानना जरूरी होता है। जैसे हमारे बाज बंगाली भाई जब उर्दू बोलना चाहते हैं या हिंदी बोलना चाहते हैं तो उन लोगों में कुछ भूल हो जाती है, जैसे कह देते हैं कि तुम्ही, जैसे लड़काओं को कहते हैं कि तुम्ही जाती हो, तो वो जाती हो तो नहीं मालूम होने की वजह से ऐसा होता है। तो यही तो जानना है, जब हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसमें जींस का जब जहाँ तक सवाल आता है जेंडर का, तो ये हिंदी में भी बहुत है इसकी पहचान और उर्दू में भी है। तो इसमें पहले जैसे कह दिया कि पहचान क्या है, तो पहले लिविंग है, जानदार जो जीवित लोग हैं इसको पहचानने में बड़ी आसानी होती है, जैसे बता दिए माँ बाप ये सब। लेकिन जो नॉन लिविंग है, जैसे कलम है, किताब है, कुर्सी है, ये कैसे पहचानेंगे? हाँ, इसमें बहुत दुश्वारी
1: परेशानी होती है
0: बच्चों को। हिंदी में भी है और उर्दू में भी, वही है, वही बात है। लेकिन समझाने के लिए कोई आदमी अगर सीख रहा है, कोई बंगाली भाई हमारी उर्दू सीखना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए? तो आसान तरीका भी निकाला गया, यही सिखाने के लिए ही तरीके निकाले गए हैं। तो क्या तरीका निकाला गया है कि पहली बात है, ये जिस लफ्ज के आखिर में जो शब्द है, उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में जो जो लफ्ज है उसके आखिर में अगर अलिफ है
1: जी,
0: जैसे लड़का, लड़का के आखिर में अलिफ है, तो अलिफ अगर होगा तो मुजक्कर होगा।
1: ये तो जानदार की बात,
0: ये तो जानदार है। लेकिन इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं डंडा, डंडा तो जानदार नहीं है, कुत्ता भी कह देंगे तो भी जानदार है, चलिए वो ठीक, लेकिन डंडा, तो डंडा जो है ये कैसे पहचानेंगे? तो ये डंडा के आखिर में, इसको जब हम लिखेंगे तो इसके आखिर में है अलीफ,
1: अलीफ है,
0: तो अलीफ अगर होगा तो वो मुजक्कर होगा। यानी जिस लफ्ज के गैर जानदार लफ्जों की पहचान में कवायद बताने वालों ने या पढ़ाने वालों, जबान पढ़ाने वालों ने जो तरीके निकाले हैं, उसमें पहला तरीका यही होता है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में अलीफ है तो वो मुजक्कर होगा। जैसे बताया डंडा, लोटा
1: जी,
0: या फिर ऐसे
1: छाता,
0: ही छाता, छाता आपने अच्छा बताया, छाता इसके आखिर में भी अलीफ है, तो इस किस्म के जितने लफ्ज हैं ये मुजक्कर हो गए। आप मुजक्कर अगर हैं तो जैसे बताया कि मुजक्कर के हिसाब से ही जुमले जब बनाएंगे, तो अगर छाता मतलब के सब्जेक्ट है तो इसके साथ अगर हम कोई वर्ब या एडवर्ब जोड़ेंगे
1: जी,
0: तो ये एडजेक्टिव जोड़ेंगे तो वही मौनस मुजक्कर होना चाहिए
1: जी।
0: है उर्दू में यही कायदा है कि अगर वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ या तो कोई एडजेक्टिव लगेगा या कोई वर्ब लगेगा। अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता भौंकता है
1: जी,
0: है उसको अगर अगर कोई बेजान चीज है जैसे छाता, तो छाता क्या है? छाता तो कोई वर्ब नहीं करेगा, तो छाता उसमें एडजेक्टिव लगा देंगे, छाता नया है,
1: बड़ा है,
0: बड़ा है, नया है,
1: जी,
0: है? काला है, तो इससे मतलब के उसी हिसाब से ही हम
1: पहचान
0: बताते हैं। मतलब मुजक्कर का ख्याल रखना पड़ता है, छाता काली है नहीं कहेंगे,
1: नहीं,
0: छाता मुजक्कर है तो काला कहेंगे। जैसे आपने बताया कि पुराना, छाता मुजक्कर है तो पुराना होगा
1: जी,
0: हाँ छाता मुजक्कर है तो नया होगा। तो उसी तरह से पहली पहचान तो मुजक्कर की यही हो गई कि लफ्ज के आखिर में अगर अलीफ है तो वो मुजक्कर। अब मौनस की पहचान जो है, लफ्ज के आखिर में अगर छोटी या है
1: जी,
0: हम लोग तो शुरू में पढ़ लिया हरूफ तहजी पढ़ लिया, तो छोटी या जो है वो अगर है तो वो सारे अल्फाज मौनस
1: मौनस में जाते हैं।
0: अब जैसे मिसाल के तौर पर कुर्सी, जिसे इंग्लिश में चेयर कहते हैं, तो कुर्सी जो है ये तो बेजान है, तो ये कैसे पहचाना, ये मौनस से कैसे पहचाना, इसके आखिर में छोटी या है। तो अब कुर्सी तो कोई काम करेगी नहीं
1: जी,
0: तो जो जानदार होता है वो कोई ना कोई काम करेगा,
1: करता है जरूर, हाँ,
0: और जो बेजान होता है तो उसको हम उसकी एडजेक्टिव से उसको
1: उसके
0: पता
1: सिफत से, उसके एडजेक्टिव से,
0: हाँ जी, असल में
1: पता कर
0: मैं एडजेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ, सिफत इसलिए नहीं कहा कि सिफत, फिर ये सिफत समझाना पड़ता कि सिफत
1: हाँ,
0: है क्या, तो एडजेक्टिव इंग्लिश का लफ्ज है, ये सब जानते हैं, तो

0: अब जैसे बिचकाए का कुर्सी, कुर्सी में भी वही बात है कि कुर्सी में भी एडजेक्टिव लगाई है, तो नई कुर्सी है, पुरानी कुर्सी, छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी
1: जी।
0: उर्दू में या हिंदी में भी यही है कि जींस का जो मामला है बहुत टेढ़ा है, तो उसको जो जानना पड़ेगा,
1: बहुत समझना और मश्क करने की जरूरत,
0: मश्क करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आहिस्ते आहिस्ते करके होता है, लेकिन अब ये तो बुनियादी तौर पर पहली बात हो गई कि लफ्ज के आखिर में अगर अलीफ है तो मुजक्कर और छोटी या है तो मौनस। अब अगर जिसके कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हाथी,
1: हाथी,
0: लेकिन अगर कहा जाए कि हाथी चलती है तो ये तो गलत हो जाएगा
1: जी।
0: तो अब लोग सीखने वाले थोड़े परेशान हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में उनको अब याद रखना पड़ेगा कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके आखिर में छोटी या है लेकिन वो मौनस नहीं है, मुजक्कर है। जैसे हाथी, हाथी मुजक्कर, हाथी जाता है। उसी तरह पानी
1: जी,
0: हाँ, अब पानी के आखिर में छोटी या है लेकिन पानी
1: मौनस
0: पड़ता
1: नहीं
0: है, ठंडा पानी हाँ, या पानी गिरता है, ये मौनस नहीं है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके आखिर में छोटी या है लेकिन वो मुजक्कर है। तो अब इसकी पहचान नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा,
1: समझना होगा, याद करना।
0: हाँ, बस याद रखना। हिंदी में भी वही तरीका है और उर्दू में भी वही बात है
1: जी।
0: उसी तरह से छोटी या है लेकिन वो मौनस है, ये मतलब कि मुजक्कर है, उसी तरह से अलीफ में भी ऐसा होता है,
1: ऐसा है जी,
0: कि आखिर में अलीफ में है लेकिन वो मुजक्कर नहीं है, मौनस है। जैसे हवा
1: जी, हवा
0: है? हिंदी हाँ। में भी कहते हैं हवा चलती है,
1: हवा चलती,
0: उर्दू में भी है हवा चलती है,
1: जबकि आखिर में अलीफ है,
0: अलीफ
1: पहचान
0: है,
1: तो हाँ। है मुजक्कर की हाँ। लेकिन ये हमें याद रखने की जरूरत है हाँ। कि हवा मौनस है।
0: ठीक, बहुत अच्छा, शुक्रिया।
1: सर आपने बहुत ही बेहतरीन चीजें समझाई, बिल्कुल बुनियादी बातों को समझाया, इस्म को समझाया और साथ साथ जिन्स के बारे में बताया, जो हमारे लिए बोलचाल की जबान के लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, बहुत बहुत
0: शुक्रिया आपका भी।
2: अभी आप हिंदी उर्दू लेसन समाप्त फरमा रहे थे। कहते हैं, अफसोस है मगर अब शिकवा नहीं मुझे, एक शख्स साथ रह के भी समझा नहीं मुझे। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का, तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सरफराज को। आपसे फिर मुलाकात होगी आइंदा किसी प्रोग्राम में। सुबह खैर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि की पहली कड़ी चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की और साथ ही साथ पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर उन्हें अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। यह दिवस पर्वतारोहण के साहस, धैर्य, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पर्वतों की सुंदरता, रोमांच और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पर्वतारोहण केवल एक साहसिक खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की कला भी है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों तक पहुंचने के लिए शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता और टीम भावना की भी आवश्यकता होती है। भारत पर्वतारोहण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाएं देश विदेश के पर्वतारोहियों को आकर्षित करती हैं। भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही और जैसी हस्तियों ने अपने साहस से नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। इस अवसर पर हमें पर्वतों की स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक प्रदूषण से बचने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हमें यह संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और साहस के बल पर जीवन की हर ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर चर्चा यहीं तक। आज है जन्म जयंती महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, शिक्षाविद और हिंदी भाषा

प्रबल समर्थक पुरुषोत्तम दास टंडन का। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई और अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल यात्राएं भी की। पुरुषोत्तम दास टंडन का सबसे बड़ा योगदान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए किया गया उनका अथक प्रयास था। संविधान सभा में उन्होंने हिंदी के पक्ष में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। भारतीय संस्कृति, स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक आदर्श राजनेता बनाता है। वर्ष 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में उनका जीवन हमें मातृभाषा के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम, ईमानदारी, सादगी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती उनके योगदान को स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संस्कारित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का भी दिन है। 1 अगस्त 1882 को प्रयागराज में जन्मे, तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे पुरुषोत्तम दास टंडन को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शत शत नमन करते हुए आज के कार्यक्रम सुरभि की कड़ी चर्चा है यहीं तक। चर्चा है कि अंतर्गत आज हमने बात की स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास जी टंडन की और साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की। कार्यक्रम की अगली कड़ी पहल का रुख करने से पहले सुन लेते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में इस गीत को।

कार्यक्रम सुरभि की अगली कड़ी पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मजबूत आधार अटल पेंशन योजना की। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत संचालित होती है तथा इसका संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सके। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता हो, नामांकन करा सकता है। योजना में लाभार्थी अपनी आयु के अनुसार मासिक अंशदान करता है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन मिलती है तथा दोनों के निधन के बाद नामांकित व्यक्ति को संचित राशि प्रदान की जाती है। अटल पेंशन योजना देश में वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत सफलता से काम कर रही है। जुलाई 2026 तक इस योजना से लगभग 8.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इसका लाभ उठा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा डाकघर इस योजना के पंजीकरण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें कम आय वाले व्यक्ति भी छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित आय सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे लोगों में बचत की आदत विकसित हो रही है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। सरकार का लक्ष्य अटल पेंशन योजना को देश के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना है। इसके लिए डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, जन जागरूकता अभियान, बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भविष्य में सरकार अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, छोटे किसानों, घरेलू कामगारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को इस योजना से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। अटल पेंशन योजना आज केवल एक पेंशन योजना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मानजनक और सुरक्षित वृद्धावस्था की गारंटी बन चुकी है। यह योजना सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार करते हुए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पहल के अंतर्गत आज हमने

बात की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मजबूत आधार अटल पेंशन योजना की। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपनी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। आज के लिए कार्यक्रम सुरभि बस यहीं तक। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों के साथ। सुनेंगे फिल्म बीवी ओ बीवी का गीत, जिसके बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत है RD बर्मन का। इसी गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को आज के लिए। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़

0: रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
2: నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను
3: సాధ్యం बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
1: Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center or Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892, when he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. Price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paise. And in Mumbai, it will be 2,691 rupees 50 paise. And in Chennai, 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. In Jammu and Kashmir, the second labourer injured in the terrorist attack in the Kelam area of Kulgam district succumbed to his injuries this morning, taking the death toll to 2.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों

की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

मंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मैं शुरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूर की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के श्रेष्ठाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Swami Vivekananda

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:21:33 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के मोहिनी में आज हम बातें करेंगे काजोल के बारे में, काजोल की फिल्मों के बारे में, और सुनेंगे उनकी फिल्मों के गीत। तो आइए सबसे पहले एक गीत और उसके बाद फिर कुछ बातें।

काजोल। काजोल हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति और दमदार व्यक्तित्व के बल पर भारतीय फिल्म उद्योग में एक विशेष स्थान बनाया है। लगभग 3 दशकों से अधिक समय से वे दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं और अनेक यादगार फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुकी है। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वे प्रसिद्ध फिल्म परिवार से संबंध रखती हैं। उनकी माता तनुजा जानी मानी अभिनेत्री हैं। उनके पिता सोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। अभिनय का वातावरण बचपन से मिलने के कारण काजोल की रुचि भी फिल्मों की ओर बढ़ी।

काजोल ने वर्ष 1992 में फिल्म बेखुदी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। वर्ष 1995 में प्रदर्शित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता शाहरुख खान थे और यह हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद करण अर्जुन, गुप्त, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, माई नेम इस खान, दिलवाले, तान्हाजी और अन्य कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। उन्होंने रोमांटिक, पारिवारिक, हास्य और गंभीर हर प्रकार की भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाई हैं।

काजोल अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली संवाद, अभिनय और भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। वे हर भूमिका में पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अभिनय करती हैं। उनकी मुस्कान, ऊर्जा और अभिव्यक्ति उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाती है। काजोल को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

काजोल भारतीय सिनेमा की एक प्रेरणादायक अभिनेत्री हैं। अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। उनका जीवन हमें सीख देता है कि निरंतर परिश्रम, आत्मविश्वास और प्रतिभा के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे आज भी हिंदी फिल्म जगत की सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। आइए उनकी फिल्म का आखिरी गीत सुनते हैं, और गीत सुनते सुनते फिलहाल रोशन मुरारका को आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा 7:30 पर कार्यक्रम दर्पण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के

0: भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
0: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मीन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Vadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekanand truly embodied the spirit of India. He highlighted that the country's youth are driving global growth.
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशस्य भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुलाद्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत

0: डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-50 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्, अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17 वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आन्ध्रप्रदेशः द्रुतगत्या अग्रेसरति। सहैव केन्द्रसर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूतसंरचनायाः औद्योगिकविकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आन्ध्रस्य अथ विकसितभारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्धो वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरम जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तन मार्गोर्जा क्षेत्राणि समेत्य 18,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः केन्द्र राज्ययोः एनडीए सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्रक्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः, सहैव राज्यस्य यूनाम् आकांक्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामिवंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
1: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की, इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: अत्रावसरे केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरान्ध्रक्षेत्रं विकासस्य, निवेशस्य, उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानंदस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं संजीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरुराज्यस्य दीवान पदभूषितं सर के शेषाद्रि अय्यर इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागो नगरे आयोजितायां विश्वधर्मसंसदि भागग्रहणाय अमेरिका यात्रायै मैसूरु महाराज्ञः श्री चाम राजेन्द्र वोडियार वर्यात् वित्तीय साहाय्यम् अलभत। अवसरेस्मिन् जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासम् अग्रे वर्धयन्ति।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: उद्घाटनावसरे प्रधानमंत्रिणे विवेक स्मारकस्य भ्रमणं कारितम्, यत्र सः स्वामी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के

0: माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम ज्वाल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamrajendra Wadiyar for his journey to the US to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on this occasion, Prime Minister Modi said, Swami Vivekanand truly embodied the spirit of India. He highlighted that country's youth are driving global growth.
1: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से?

मीडियम वेव 297 6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:31:04 हुए हैं। वक्त हो रहा है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना तथा माताओं का स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान

विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ तथा अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाता है। एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ बच्चों से होता है और स्वस्थ बच्चों की नींव माँ के दूध से ही पड़ती है। इसलिए सप्ताह केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। इसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

संक्रमणों से बचाता है। चिकित्सकों के अनुसार जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए तथा जीवन के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल माँ का ही दूध ही देना चाहिए। इसके बाद भी 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक पौष्टिक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना लाभदायक माना जाता है। स्तनपान से शिशु को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मां का दूध पूरी तरह स्वच्छ, सुरक्षित और आसानी से पचने वाला होता है। इससे शिशु को दस्त, निमोनिया, एलर्जी और कई अन्य संक्रमणों का खतरा कम हो जाता है। स्तनपान करने वाले बच्चों का शारीरिक विकास बेहतर होता है तथा उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक मजबूत होती है। माँ का दूध शिशु के मस्तिष्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चे की स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता तथा मानसिक विकास में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त स्तनपान से माँ और बच्चे के बीच स्नेह, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद माँ का शरीर जल्दी सामान्य अवस्था में लौटने में सहायता मिलती है। यह कुछ गंभीर रोगों के जोखिम को कम करने में भी सहायक माना जाता है। स्तनपान कराने से माँ का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उसे अपने शिशु के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलता है, जिससे दोनों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध विकसित होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस सप्ताह के दौरान अस्पतालों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान, रैलियां, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। विशेषज्ञ माताओं को सही तरीके से स्तनपान कराने की जानकारी देते हैं तथा परिवार के सदस्यों को भी माताओं का सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और समाज में ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां माताएं बिना किसी संकोच के अपने शिशु का स्तनपान करा सके। स्तनपान को सफल बनाने में केवल माँ की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि परिवार के सदस्य माँ को उचित सहयोग, पौष्टिक भोजन, आराम और मानसिक समर्थन दें तो अपने शिशु की बेहतर देखभाल कर सकती है। कार्यस्थलों पर मातृत्व अवकाश, स्तनपान कक्ष तथा अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। विद्यालयों में भी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में वो एक जागरूक नागरिक बन सकें। विश्व स्तनपान सप्ताह में यह संदेश देता है कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला हैं। माँ का दूध शिशु का पहला अधिकार और जीवन का सबसे उत्तम आहार है। प्रत्येक परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था और समाज का कर्तव्य है कि वह स्तनपान को बढ़ावा दें और माताओं को हर संभव सहयोग प्रदान करें। यदि हम स्तनपान के महत्व को समझकर इसे अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तो आने वाली पीढ़ियां अधिक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित होंगी। यही विश्व स्तनपान सप्ताह का वास्तविक उद्देश्य और संदेश है। अभी आप सुन रहे थे एक नजर। आज हम बातें कर रहे थे विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में।

आइए अब साप्ताहिकी की ओर आपको ले चलते हैं, जो हमारा साप्ताहिक न्यूज बेस्ड कार्यक्रम होता है। साप्ताहिकी को तैयार किया है नूपुर तिवारी ने।

नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ हम फिर हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आज के अंक में हम बात करेंगे प्रेमचंद, स्तनपान दिवस, कारगिल और हेपेटाइटिस डी के बारे में। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह से। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें ऐसे सभी आवश्यक पोषक तत्व है, एंटीबॉडी है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे को संक्रमण और कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ की सलाह है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए। साथ ही जन्म के बाद 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाए। इसके बाद 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना लाभकारी माना जाता है। स्तनपान के लिए शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद शरीर के सामान्य होने में सहायता मिलती है, कुछ प्रकार के कैंसर और जोखिम कम हो सकते हैं और

0: और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार, समाज, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सेवाएं मिलकर स्तनपान कराने वाली माताओं को सहयोग दे। सही जानकारी, सकारात्मक वातावरण और सामाजिक समर्थन से अधिक बच्चों को स्तनपान का लाभ मिल सकता है। स्वस्थ बचपन की नींव माँ के दूध से ही मजबूत होती है। इस विषय पर हमने एक चिकित्सक से बात की।
1: मैं प्रोफेसर आलोक दे, हम इस फील्ड में अभी 27 इयर्स काम कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, फीडिंग तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ये मदर्स गिफ्ट है फॉर एवरी चाइल्ड। ये यूनिसेफ का एंड हु का ये पूरा थीम है इस वीक का, प्रायोरिटाइजिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये आप इमोशनल बात छोड़े तो साइंटिफिक बात करते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क जो है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये कंप्लीट फॉर्मूला है फॉर बेबी सर्वाइवल, बेबी न्यूट्रिशन। तो ये छोड़ के आप बताएंगे और क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो है इम्यूनिटी जो पावर बेबी का जब न्यूबॉर्न है नहीं रहता है, लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कुछ चीज ब्रेस्ट मिल्क में आ जाता है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन हम बोलते हैं, कुछ प्रोटीन बोलते हैं, कुछ आयरन बोलते हैं, कुछ लैक्टोफेरिन जो है, ये जो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि बेबी को कुछ इन्फेक्शन से बचाए, कुछ डिजीज है क्रॉनिक डिजीज से बचाए। एंड अदर थिंग क्या है कि ये ब्रेस्ट फेड न्यूबॉर्न्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम जिसको बोलते हैं ब्रेन का आईक्यू, हम सीधा सरल भाषा में जिसको बोलते हैं, ये आईक्यू डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
0: आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना, समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना और उपचार की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर में सूजन पैदा करती है और समय पर इलाज न मिलने पर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकती है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में रह सकते हैं, इसलिए समय पर जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती पहचान और सही उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का इलाज कई मामलों में संभव है। इस बीमारी से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका, सुरक्षित रक्त चढ़ाना, केवल नई या स्टरलाइज सुई का उपयोग, स्वच्छ भोजन और पानी और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना बेहद जरूरी है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का संदेश है, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी हेपेटाइटिस की रोकथाम, जांच और उपचार तक पहुंच में आने वाली सामाजिक, आर्थिक और अन्य बाधाओं को मिलकर दूर करें। इस बारे में भी हमने बात की एक विशेषज्ञ से।
2: गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर जावेद वकार सादिक, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस लीवर का एक इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, एक आघात है। ये कैसे होगा? ये कॉमनली जो होता है वायरस से होता है। वायरस जो है कई प्रकार का है, जिसे हेपेटाइटिस का ए, बी, सी, डी और ई वायरस, पांच टाइप का वायरस है। अल्कोहल पीने से होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, कुछ फंगल इन्फेक्शन से भी होने का चांस है, और कुछ ड्रग्स जो है या दवाई जो है उससे भी आपको हेपेटाइटिस होने का चांसेस है। कॉमनली यूज ड्रग्स है, जैसे एक्सेस ऑफ पैरासीटामोल जो बुखार का दवाई है या दर्द का दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, सबसे हेपेटाइटिस होने का भी डर है।
0: आइए अब बात करते हैं विजय दिवस की। लगभग दो महीने तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विषम मौसम और दुर्गम पहाड़ियों के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया। टोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसी रणनीतिक चोटियों पर विजय भारत की सफलता के महत्वपूर्ण पड़ाव बने। अंततः 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपने सभी प्रमुख सैन्य ठिकानों पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया और विजय प्राप्त की। इस दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय सैनिकों के शौर्य, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आइए चलते चलते बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का नाम भारतीय साहित्य में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, जबकि वे साहित्य जगत में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं, ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण और सामाजिक विषमताओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियों में गोदान

0: गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और अनेक प्रसिद्ध कहानियां जैसे ईदगाह, कफन, पूस की रात और दो बैलों की कथा शामिल है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनका साहित्य आज भी समाज को संवेदनशीलता, समानता और मानवीय मूल्यों का संदेश देता है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। इस विषय पर एक कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें बताया कि
1: प्रेमचंद ने किसी एक विशेष चीज में बद्ध के नहीं लिखते हैं। आप उस समय के कहानीकारों को या उपन्यासकारों को देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की बात या समाज सुधार की बात या धार्मिक चेतना की बात वह करते, लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया कि दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता और स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं। तो यह अपने आप में एक अनूठा है कि एक व्यक्ति एक ही जीवन में इतनी सारे चीज़ों पर बात कर लेता है। और रही उनकी कहानियों की बात, तो कहानियाँ अपने आप में उनकी कहानियाँ नगीने हैं, लगभग 300 के आसपास उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। वह कहानियाँ हमारे समाज के एक छोटे से छोटे जो तबका होगा उसको जीवित करने का प्रयास किया गया है। और यह ट्रेंड जो देखें तो आप देखेंगे पंचतंत्र, हम लोग कहते हैं कि कहानी का विकास हम यूरोप से लेके आए हैं, लेकिन आप यह ना समझ मतलब भूलें कि प्रेमचंद के समय में भी और प्रेमचंद से पहले भी हमारे यहाँ पंचतंत्र, कथोपदेश, तमाम तरह की कथाएं चलती थी।
0: आप सुन रहे थे शहर की तमाम गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम साप्ताहिकी। अगले अंक में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक राउंड बेस्ड रामडव न्यूज बेस्ड कार्यक्रम साप्ताहिकी, आलेख संकलन और संपादन नुपुर तिवारी का था।

और अब चलते चलते हैं फिल्मी गीत, आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में बेवफा सनम से अगला नगमा। गीतकार हैं अताउल्ला खान और संगीतकार निखिल विनय।

आइए सुनते हैं अगला नगमान राधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम, गीत लिखा है समीर ने और संगीत निखिल विनय का है।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए और गीत सुनते सुनते आपके दोस्त रोशन मुरार का को यहीं पत्रिका कार्यक्रम दर्पण समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आखिरी गीत मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में, फिल्म है कब तक चुप रहूंगी, गीतकार सबीर और संगीतकार बप्पी लहरी।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:30 हुए हैं। पेशा खिदमत है हमारा हफ्त रोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां आपके रेडियो मेजबान अयाज अहमद रोहवी के साथ। ये प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी दस्तियाब है या फिर मोबाइल फोन पर संचयता चैनल टैप करके ऑनलाइन रेडियो पर भी ये प्रोग्राम सुना जा सकता है।

सामीन, आज भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन की यौम पैदाइश है। टंडन की पैदाइश यकुम अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश में हुई थी। घर पर अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने मुयर सेंट्रल कॉलेज से आला तालीम हासिल की।

नियाज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुमताज वकील तेज बहादुर सिप्रू के मातहत किया था। ताहम सियासत में उनकी बढ़ती हुई शमूलियत ने इन्हें 1921 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस को मुकम्मल तौर पर सियासी सरगर्मी पर तवज्जा मरकूज करने पर मजबूर किया। टंडन ने कॉलेज के जमाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। आजादी की पूरी जद्दोजहद के दौरान टंडन ने अदम तआवुन और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीकों में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। वो किसानों के हकूक के लिए भी एक कट्टर वकील थे। 1934 में किसान सभा के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। नागरी रस्म उलखत में हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी जबान के तौर पर आगे बढ़ाया। वो 1950 में कांग्रेस के सदर बने। इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में खिदमात अंजाम दी और अवामी उमूर में उनकी शराकत के लिए 1961 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, आज कोह पैमाई का कौमी दिन है। कोह पैमाई का कौमी दिन हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। कोह पैमाई एक अमरीकी जश्न है जो कोह पैमाओं और कोह पैमाई के नज्म व जब्त का एहतराम करता है। ये चोटियों पर चढ़ने के जिस्मानी और जहनी चैलेंजों, पूरी तारीख में कोह पैमाओं की कामयाबियों और ऊंची जगहों पर वक्त गुजारने की खुशी को तस्लीम करता है। ये दिन तजुर्बाकार कोह पैमा और मुकम्मल इब्तदाई अफराद के लिए यकसां अपील भी करता है। इस मुश्तरका पैगाम के साथ के पहाड़ों से लुत्फानंदोज होने के लिए कोई भी कोशिश करने को तैयार है। ये सबसे पहले और सबसे अहम शिरकत का दिन भी है, जिसकी तवज्जो रस्मी तकरीब के बजाय लोगों को बाहर ले जाने पर मरकूज है। पहाड़ पर चढ़ना जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी लचक और कुदरती दुनिया के लिए गहरी खुशी पैदा करता है। आज का ये दिन लोगों की हौसला अफजाई भी करता है। तो सामीन, अभी आप आज की बात के तहत समाप्त फरमा रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन की यौम पैदाइश और कोह पैमाई के कौमी दिन पर हमारी गुफ्तगू।

दोस्तों, अब बारी है बरगे ख्याल का। इस मौजू के तहत इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं नैयर मसूद की अफसाना निगारी पर हमारी तफसीली गुफ्तगु। समाअत फरमाएं। उर्दू अदब में 1970 के बाद जिन अफसाना निगारों की वाज़ह शनाख्त हुई, इनमें नैयर मसूद का नाम भी आता है। नैयर मसूद आला दर्जा के महक्किक, मुतर्जिम और नक्काद की हैसियत से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी शोहरत की खास वजह इनके वो अफसाने हैं जो चार मजमुओं में शाये हुए हैं। ये मजमुए सीमिया, अतर काफूर, ताऊस चमन की मीना और गुंजफा के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अपने अफसानों में रिवायती बयानिया से अलग हटकर इसे मगरबी पैराए का इजहार देकर पेश किया है। नैयर मसूद के बेशतर अफसाने उनके ख्वाब में नजर आए। जमा और मकां से परे नकूश अवामिल या वारदात के अक्स हैं, जिन्हें लफ्जी जामा पहनाकर अफसाना या किस्सा का रूप दिया गया है। साथ ही इस बात पर भी खास तवज्जो दी गई है कि ख्वाब किस इस तरह पेश किया जाए कि खारी के दिल पर भी वैसे ही एहसास व असरात मुरतब हों जो मुसन्निफ के दिल पर हुए। इसलिए मौका के एतबार से सही अल्फाज का इंतखाब करना, जुमलों को ऐसे तरतीब देना जिससे नकूश उभर कर सामने आ जाएं और कम से कम और आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल करना वगैरह शामिल हैं। ये सभी इन असलूब की गैरमामूली खसूसियात हैं। नैयर मसूद के अफसाने चूंकि इनके ख्वाबों से तराशीदा होते हैं,

इसलिए अमूमन इनके अफसानों का कोई मौजू पहले से तय नहीं होता। उनका कहना है कि उनकी कहानियों में बल्कि पूरी जिंदगी में ख्वाबों का बड़ा किरदार है। बाज ख्वाब तो इस कदर मरबूत होते हैं कि वो ख्वाब बार बार दिखाई देते हैं। इनके अफसानों में मौजूआत का तनव्वो मिलता है। इनकी कहानियों में वक्त, यादें, तारीख, तहजीब और फलसफा जैसे मौजूआत नुमाया होते हैं। वो अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी के वाकयात को फलसफियाना और आलामती अंदाज में पेश करते हैं। नैयर मसूद की अफसाना निगारी उर्दू अदब में एक मुनफरिद और गहरी फिक्र रखने वाले अफसाना निगार के तौर पर जानी जाती है। इनके अफसानों में ख्यालात की गहराई, तजरीदियत, तह दर तह मफाहीम और नफ्सियाती अंदाज़े बयां की झलक नुमाया होती है। नैयर मसूद को समझने के लिए ज़रूरी है कि उनके अफसानों के बुनियादी फिक्री मौजूआत को समझा जाए, जो इनकी तख्लीकात को मुनफरिदो हैसियत अता करते हैं। मुख्तसरन ये कहना बजा है कि नैयर मसूद की अफसाना निगारी उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखती है। सामीन, अभी आप बरगे ख्याल के तहत समाअत फरमा रहे थे नैयर मसूद की अफसाना निगारी पर हमारी तफसीली गुफ्तगू। अब प्रोग्राम के अखीर में आपके अदबी जायके को बदलते हुए हम आपको लिए चलते हैं गजल की दुनिया की तरफ। तो लीजिए, हाजिर है पंकज उदास की खूबसूरत आवाज में ये गजल। गजल सुनते हुए आप अपने इस मेजबान को भी रुखसत होने की इजाजत दें। शब बखैर। लीजिए, हाजिर है ये गजल।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।

0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर NEET PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश।

0: में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में मतलब मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और बीएफआई को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru. Credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
4: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
3: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध

शूर सिद्ध तुम सभी जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का

विवाह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्र

और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, और लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह की जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए
और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की

0: चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था जो समाज की व्यवस्था थी उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को जो हमारे विकास में हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषिभूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर।

0: और कराल है।
1: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
0: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
0: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए

0: सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
1: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
0: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
1: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
0: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
1: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक

0: पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: কাজ সূচনা হয়েছে। জনগণনার সেলফ এনুমারেশন বা স্বগণনা প্রক্রিয়ার কাজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নবান্নের সূচনা করেন। এই প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেলফ এনুমারেশনের কাজ হচ্ছে। অনলাইনে আবেদনকারীদের 34টি প্রশ্নের জবাব দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দারুণ পারফরমেন্স অব্যাহত। বক্সিংয়ে অরুন্ধতী চৌধুরী, প্রীতি পাওয়ার, সাক্ষী চৌধুরী, প্রিয়া গাঙ্গাস, জ্যাসমিন লাম্বোরিয়া ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন। মহিলাদের 60 কেজি বিভাগে প্রিয়া কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 4-1 হারিয়ে সোনা জেতেন। 51 কেজি বিভাগে সাক্ষী চৌধুরী জয় পেয়েছেন, তিনি ইংল্যান্ডের রুবি হোয়াইটকে হারিয়ে দেন। মহিলাদের 54 কেজি বিভাগে প্রীতি পাওয়ার কানাডার স্কারলেট ডেলগাডোরকে 5-0 পরাজিত করে সোনা জিতেছেন। মহিলাদের 57 কেজি বিভাগে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মিখাইল ওয়ালেশকে হারিয়ে 5-0 হারিয়ে দেন জ্যাসমিন লাম্বোরিয়া। অরুন্ধতী চৌধুরী 70 কেজি বিভাগে ইংল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। পুরুষদের বক্সিংয়ে ভারতের যদুমণি সিং 55 কেজি বিভাগে রূপো পেয়েছেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার জাই ডিক্সনের কাছে পরাজিত হয়েছেন। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের শর্টপাট F57 ইভেন্টে সোমন রানা সোনা এবং শুভম জুয়াল রূপো জিতেছেন। ভারতের ট্রিপল জাম্পার প্রবীণ চিত্রবেল রূপো এবং সেলভা প্রভু ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি যুব সমাজের হাত ধরেই চালিত হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমস বক্সিংয়ে আজ এখনও পর্যন্ত ভারত 5টি সোনা পেয়েছে। খবর শেষ হল।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে রবি কাপুর। मुख्य समाचार। स्पेन के स्यूटा सीमा संकट में मृतकों की संख्या बढ़कर 67 हुई। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सेना पर दमन का आरोप लगाया। फ्रांस में जंगल की भीषण आग पर काबू, हजारों लोग अपने घर लौटे। दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक में हिमस्खलन से निधन। और राष्ट्रमंडल खेलों में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलीट सोमन राणा ने पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। स्पेन ने कहा है कि मोरक्को से लगी सियूटा सीमा पर प्रवासी संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। इनमें समुद्र में डूबने वाले और सीमा पार करने की कोशिश के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग शामिल हैं। इसके बाद स्पेन ने सियूटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी अवरोधक दीवार लगाने की घोषणा की है।
2: इस सप्ताह 50,000 से अधिक प्रवासी सियूटा में दाखिल हुए थे। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से अधिकांश लोगों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है और दोनों देशों के अधिकारी स्थिति को सामान्य बनाने तथा राहत कार्यों में जुटे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपीय संघ से इस मुद्दे पर सदस्य देशों के गृह मंत्रियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि स्पेन ने 48 घंटे के भीतर सीमा पर नियंत्रण फिर से स्थापित किया, राहत सहायता उपलब्ध कराई, अधिकांश प्रवासियों को वापस भेजा और उन्हें यूरोप के अन्य हिस्सों में जाने से रोका। इस संकट के बीच इटली ने भी स्पेन से लगती सीमाओं की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका असर दोनों देशों के बीच हवाई और समुद्री सेवाओं पर पड़ेगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ये प्रतिबंध आज से 1 महीने तक लागू रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है।

0: नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकेला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार करीब 6 वर्ष बाद फिर से शुरू हो गया है। किन्नौर जिले के पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नवग्या में आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने छुपन ट्रेड मार्ट का उद्घाटन किया और 17 व्यापारियों के दल को सीमा पार व्यापार के लिए रवाना किया। कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 से ये व्यापार बंद था। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में लगी जंगल की भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद करीब 1,98,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। हालांकि दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से फिर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी अब भी 240 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आग के बचे हुए हिस्सों और सक्रिय स्थानों पर काबू पाने में जुटे हैं। ग्रीस में एथेंस के पश्चिम में प्रोटो जर्मनो तटीय क्षेत्र के पास तेज हवाओं के कारण जंगल में आग फैल गई। करीब 300 लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। फ्रांस और स्पेन में लगी जंगल की आग के कारण अब तक करीब 3,30,000 लोग अपने घरों और पर्यटक स्थलों से विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स से बात की और इस हफ्ते की शुरुआत में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक पर चर्चा की, जिसे उन्होंने सकारात्मक और सार्थक बताया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का 43 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया है।
2: निर्मल पुर्जा ने महज 6 महीने में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करके ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। निर्मल पुर्जा उन 10 सदस्यीय अभियान दल का हिस्सा थे जो ब्रॉड पीक पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे, तभी 30 जुलाई को हिमस्खलन आ गया। उनके निधन की पुष्टि आज अभियान कंपनी एलीट एक्सपेड ने की। पाकिस्तानी पर्वतारोहण अधिकारियों ने बताया कि कल पर्वत से 4 शव बरामद किए गए थे। विश्व दर्पण के लिए भारती।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीते। मुक्केबाजी में साक्षी प्रिया, प्रीति पवार, अरुधन्ति चौधरी और जैस्मिन लिम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग में पदक देश के नाम किया। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। अरुधन्ति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। उधर जूडो के 63 किलोग्राम स्पर्धा में उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। एथलेटिक्स में सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,